पकड़ेगा भांजा बादशाह रे जैसे मछली ने तीर भेजी और क्या तो पकड़े सरजारा बादशारा मछली ने की मिया मेरे हाथ आ जड़े दे